त्वं श्रीजगदम्बाहुलिगाम्बा तव सुप्रभातम् शार्दूल पञ्च नख केकि तुरङ्ग नागान् अरुह्य देवि महितान् नवरात्र काले अगच्छ भक्त जन पालन तत्परा त्वं श्रीजगदम्बाहुलिगाम्बा तव सुप्रभातम् शुद्धो नृपार्दित पितुर्निकृते स रामः युद्धे प्रविश्य सहसा परराजलोकम् त्रिसप्तहारमभिहत्य ददौ निवापान् श्रीजगदम्बाहुलिगाम्बा तव सुप्रभातम् शुद्धो नृपार्दित पितुर्निकृते